अपना जान कर प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर तारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कब ताबे दनाना कृष्ण जथा मत चरितरो चारो चूक हो कब लो सुधारो कब बाच दो हरा जो निज प्रभ मो सो कहा हूं जग माहे जो तेह प्रभ को त्याय अंत सुर्ग को जाहे दो हरा हर हर जन दो एक है बिब विचार कछ नाहे जल तुभ तरंग जाओ जले बिखस माहे दो हरा जब आयस प्रभ को पहो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए कब बाच दो हरा ठाड पहो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चला तब जगत में जाओ तुम करो सहाय दो हरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ है संत अंत लहेंगे मुक्त बल पावेगे भगवंत दो हरा काल पुरख की देह मो कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेह राव सास करोर जलेस दो हरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास राग बर करा सगरी पुरी समेत चापई जो है कथा सुने और गावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिशन भगत की फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई संबत सत्रह सास पचावन हाड़ वादी प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लेह सुधारा दो हरा नेत्र तोंके चरण तार स्तर तीर्थ रंग श्री भगवत पूरन की ओ रागबर कथा प्रसंग दो हरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूरन की ओ भगवत कृपा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत

दर्शन प्यासे दिन सरात चितवा आनंद ननीत खोल कपट गौर मेलिया नानक हर संग मीत धर्मद ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करा को मेरी दर्शन दीजा खोल के वार सो कहो टल गोर से अहन सुसाज सुब दर्शन पर से गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुआ शिव तख समी नूर अरसो कुरसो चटी तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात साहो सिर सा दासा हो।

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु

ओ बुड्ढी मां कुड़ियां नू केरे पिछे हट के बह जाओ ओ जो भी लेना लाग एदे तो छेती छेती ले लो ओ जो भी लेना लाग एदे तो छे

कच्ची कंदवल नस कमाई चोजी प्रीतम प्यारे ओ प्यारी पुरिया लोकी कर दे कंद दे अज दीदारे ओ प्यारी पुरिया लोकी कर

योग गुरु की साजी निवादी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहर अहमत दा सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना दे अंदर आप संगतां रब्बी बाणी तुरकी बाणी अकाली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी ने महान तरस कीता है हुण तक 1007 अंग सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिया दी पावन बाणी आपां पढ़ी सुनी है। 1007 अंग तों पहला शब्द जिहड़ा प्रारंभ हो रहा है राग मारू दे विच्चों पंजवें पातशाह महाराज जी कृपा कर रहे हैं। मारू महला पंजवा ताज आप बिन सीताप रेण साधु थीओ तिसह प्राप्त नाम तेरा कार कृपा जिस दीओ। इथों पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। श्रद्धा प्रेम भावना अदब सत्कार सहित मन चित बिरती नूं एकाग्र करके सरवण करिए जी।

0: मेरे प्रभ पावन से उजले सब मैल परिजै मैला उजलता थीऐ पारस सांग पीजै
1: मैला पाठ ते जमक जरूर लाउणी मैला उजल कह दिता फिर अर्थ दा अनर्थ होवेगा मैला उजल तात ही है मैला जड़ा है वो तां पवित्र मन्या चावेगा पारस संग पीजै गे जे गुरु दी पारस रूपी संगत दे विच पिजेगा जुड़ेगा मैला उजल कठा कह दिता अनर्थ होवेगा मैला उजल तात ही है इदा उचारण करना जिवें ज्ञानी जी ने भी किया है।

0: गुरमुख नाम निरंजन पाइया अफरियो भार अफार टरै
1: अफरियो अफ बोल के रियो सारा पाठ साध संगत जी है कठा ही है ऐड़े नू अगेतर नहीं लाउणा अफरियो जिवें उचारण कीता है पोला पाठ करना कसणा नहीं अफरियो।

मेंडा पाठ ज्यादातर उच्चारण किया जाता है, मेंडा नहीं कहना, मैडा ही उच्चारण करना बिंदी तो रहत। मैडा मन रत्ता आपनड़े पेर नाल, आपन बोल घेड़े, पाठ इकट्ठा ही है,

हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिद तिसह परापते जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की सरनागना मारू महला पंजवा आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ तुधे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हिरदय वासे दूजा भाव मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना नौ निध रिद्ध सिद्ध पाई जो तुमरे मन भावना संत बिना मैं थाओ न कोई अवर न सूझे जावना मोहे निर्गुण कहो कोई न राखे संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आघावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेसुर फिर नागे नहीं थीवना भोगना मन मध्य हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सूई आनी मन हर भगती संग सीवना मात्या हर रस महराते तिस बहुड़ ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत धोए पीवना मारू महला पंजवा घर अठवा अंजुलिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जिस गृह बहुत तिस

पंच चोर चंचल चित चाल है, पार घर जो है घर नहीं पाल है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द पत जाई हे, गुरते बूझे त्रिभवन सूझे, मनसा मार मने स्यो लूझे, जो तुध सेव है से तुध ही जे हे, निर्भव बाल सखाई हे, आपे सुर्ग मच्छ पै

साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई हे जुग जुग साचा है ही होसी कौन न मुआ कौन न मरसी।

अंतर अगन जले पड़कारे मनमुख तक्के कुंडाचारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईए साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे ज्ञान खड़ग लै मन स्यो लूजे मनसा मनह समाई हे माँ की रक्त पिता बेद धारा मूरत सूरत कर आपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई हे तुझ ही किया जम्मण मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख है दुख दर्द शरीर हो जाई हे निज घर बैस रहे पाओ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल दिगास हरे सर सुबर।

0: सत जुग सत संतोख शरीरा सत सत वरतै गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परखै साचै हुकम चलाई हे सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मन्ने सो सूरा साची दरगह साच निवासा मानै हुकम रजाई हे सत जुग साच कह सब कोई सच वरतै साचा सोई मान मुख साच परम पहो भंजन गुरमुख साच सिखाई हे
1: मन अड ते मुख अड इथे इसे तरह उच्चारण करना मन मुख कठा नहीं कहना हांजी
0: त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुविधा सूकी गुरमुख हो वैसो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई हे मनमुख कदे न दरगह सीजे बिन सबदे क्यों अंतर रीज।

भाई दे बोल हमेशा चेते रखना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। ऐ मेरे भरा भाई करके संबोधन कर, मता किधरे तुसी समझो किसे होर दे हाथ च भी कोई शक्ति है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कुछ भी हरी तो बिना प्राप्त नहीं होंदा, ना वर ना शराब ना सुख ना दुख, जो कुछ भी आंदा है कर्मा अनुसार सब परमात्मा तो आंदा है, किसे तो कुछ नहीं आंदा। सब झूठ है, सब पखंड है, पर मैं एक दफा अर्ज कर दिया, एक तंदुरुस्त बंदे नु भी पांच चार डॉक्टर कह दें तेनु ये रोग है तेनु एक रोग है, उदा मन ते पकड़ लेगा। ये तागे तवीज जादू टोने करन वाले पहले कहंदे ने तेनू कुछ है, आ गल है तेरे नाले घटना घटनी है, फिर कहेंगे आपां दूर करांगे। धंधा और जिन्ने चिर तक मनुख वहम तो माद दे चक्कर च पिया होया है, समझ ज्यादा नहीं है, कोई ना चक्करां च पएगा। गालिब कहंदा है ऐ ईसा ये जो तू अंधे नू अखां दे दितिया, बीमार नू तंदुरुस्त कर देता, मुर्दे नू जिंदा कर देता, मैं तेरी इस सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। ऐ भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। जिसनों तू जिंदा किया फिर नहीं मरिया, ते जे फिर मर गया ते बच्चियां दे तमाशे तू भी करदा रहा, एवें खेडां खेडदा रहा बच्चियां दे खिडौणियां दे नाल, सिद्धि सिद्धि खिडौणा। अकल महान होवे मनुख इन्हां चीजां तो प्रभावित नहीं आउंदा, अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या फिर संसार चोट कर जाए, बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गए, बड़ा समृद्ध सी बड़ा कमजोर हो गए, बड़ी मान प्रतिष्ठा सी बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है, उदास ते निराश भी तीन कारण करके होवेगा, शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते ने, आत्म क्रांति आत्म हत्या आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्नां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति शब्द तो जिसने चोट खा दी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा, कहेगा ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवांगा, अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहना मैं उस तरीके नाल चला, हुण मैं अपना रहन सहन अपनी तर्जे जिंदगी ऐ गुरु तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहना है। इनू कहंदे ने आत्म क्रांति, खुद नू बदलना, आत्म हत्या सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया बिल्कुल, उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश च सब तो ज्यादा है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने दिनवान, एक मैगजीन है भारत दे च निकल दी मंथली, उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कां दे हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुसाइड करन वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करदे ने, और सब तो ज्यादा पागल भी इत्थे, गुस्ताखी माफ क्षमा की याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नूं भुलाण की कोशिश करेगा, दिन रात शराब के नशे ही रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप नूं भुलाएगा, चेते कुछ भी ना होए। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है, उदासी च किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख,
या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नो बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नो खत्म

0: में करेगा या आत्मविस्मृति करेगा, खुद नू बुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग रेच, ये आत्महत्या नहीं करेगा, ये आत्मविस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्मक्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की थी उसनों, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसे किसे ने सही फैसला भी किया है, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नूं बदले है। लेकिन ऐसा भी आंदा है खुद नूं भुलाण की कोशिश करेगा, दिन रात नशे च होना या सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्महत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया ना उदास होया। बाकी का खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय की उलंघना ना करा। दरबार साहब के आए हुए महान कीर्तनी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, रब्बी रस बनता है, आप समय सिर आया करो।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

0: तो मैनू बेगम दिखाई देनी है, चंगी लगती है। जब मेरी अकल कम कर दी है, चानना होंदा है, तो मिट्टी का बुत दिखाई देने, मिट्टी का खिडौना। हुण तू आप दस, बेगम बन के रहना ही कि मिट्टी का खिडौना बन के रहना है? गालिब और गालिब जारो जार रोन लग पाया, कहन लगा मिट्टी के खिडौनिया नाल मैं खेड नहीं सकता, इस तो उच्ची दुनिया की मैनू प्राप्ति नहीं, तो मैं की करा की करा। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। मैं तो इतना बेचैन, कुछ भी नहीं जगत दे जिदे आसरे ते मैं जीवा। ऐसा परेशान बेचैन मनुख सियाणप दी इंतहा नू छोया है, लेकिन एक खतरा है, ऐसा मनुख अपने आप नू भुलाण दा यतन कर सकदा है। 99% उर्दू दे शायर, हिंदी दे कवि, पंजाबी दे कवि गुस्ताखी माफ शराबी ने, कोई कवि बैठा हो माफी मैं पहले मांग लेना, 1% वो अपने आप नू समझ लवे शराबी ने। सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख या अपने आप नू भुलाएगा या अपने आप नू खत्म करेगा। हकीम मोमन खान मोमन हिंदू कहते ने, इहदे बोल उपनिषदां वर्गे ने। हकीम मोमन खान मोमन पता की कहता है? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर जाइए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जब की मिट्टी के खिडौने नाल खेडना। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहने एक ख्याल मैनू मरण नहीं दे रहा, खुदकशी नहीं करन दे रहा, मर के भी मैनू चैन ना मिलिया फिर मैं की करांगा। लेकिन मरण दी ते सोची है उसने, इतने सियाणे मनुख ने। बहादुर शाह जिसनों सलाम करता है, सजदा करता है, वो कहता है मैं खुदकशी करन दी सोच। उदास ते निराश मनुख या ते अपने आप नू बदलेगा या अपने आप नू खत्म करेगा या अपने आप नू भुलावेगा। पर शब्द की चोट जिसने खाधी है, वो अपने आप नू खत्म नहीं करेगा, अपने आप नू भुलावेगा भी नहीं, बदलेगा। ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवना, तू अमृत वेले उठण नू कहिंदा मैं अमृत वेले उठांगा, तू मंत्र दा जप कहिंदा मैं मंत्र दा जप करांगा, तू श्वास श्वास जपण नू कहिंदा मैं दिन रात जपदा रहांगा, तू परहेजगारी दसदा मैं परहेजगार हो जावांगा, जो कुछ तू कहिंदा मैनू कबूल, मैं हुण तेरे ढंग नाल जीवांगा, अपने ढंग नाल मैं जी के देख ले। ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, ऐ धन गुरु नानक, ऐ कलगीधर पातशाह, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जो तुसी कहिंदे हो हुण मैं थोड़े ढंग नाल जीवांगा। इस तरह का जिसने फैसला कर लिया ते उदी जिंदगी दे की घटनावां घटदियां ने, ये बाकी विचारां मैं थोड़े सामने कल रखांगा। महान कीर्तनी दरबार साहब दे बड़ा सुंदर कीर्तन करदे ने, इन्हां दे समय दी मैं उलंघना ना करा। इन्हां कोलो आप हरि जस कीर्तन दे राही सरवन करो। ये कड़ी ये लड़ी फिर कल अगे जो है तोरांगे, इत्थे ही समाप्ति। सारयां दा धन्नवाद, बुल चुक दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।

जे विद मन को संसार चूके पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो

पांच तिरसान शरीर धरती है देही गावा जियो तर महतो बसे पंच कर किसाना केड़े पंच किसान ने नैनू अखी वेख न रजिया बो रंग तमाशे नैनू नकतू सर्वनू इंद्री रसबत कह लगे ए अखा ए कान ए नेतर ए जेड़े पंच किसान ने ए साडे अंदर नू मानदे नहीं देही गावा जियो तर मैं तो बसे पंच किसाना नैनू ए अखा नकतू सर्वनू इंद्री रसबत इंद्रिया जेड़े दुनिया दे रस विच खचत ने वाहेगुरु जी इंद्री कहा न मन ए इंद्रिया जेड़िया ने कह कोई नू मन दिया ने उस एक बाबा जी ने बचन किया कहन लगे बाबा अब ना बसो ए गाँव हुण इस शरीर विच मैं रहना नहीं केड़ी थां ते रहना जे इस शरीर विच नहीं रहना वाहेगुरु मेहर करे शरीर विच रह के भी सानू शरीर तो उपर रहन दी जाच आ जाए रहिए असी शरीर विच पर शरीर तो उपर उठ के रहन दी जाच आ जाए बाबा अब ना बसो ए गाँव क्यों करी करी का लेखा मांगे कायत चेतु ना जदो अंतला समा आया प्यारियो इन्हां इंद्रियां ने रस भोगे पर लेखा इंद्रियां ने नहीं देना धर्म राए जब लेखा मांगे बाकी निक्षी भारी ते साहब कहिंदे पंच किरसाणवा भाग गए अखां चलिया गईयां कन चले गए जीव चली गई ए शरीर दी सात सत्या ताकत चली गई पंच किरसाणवा भाग गए लै बांधियो जियो दरबारी अंदर वाले नु पुछया गया जिन्हां ने इस रस नु भोगिया सतगुरु के प्यारियो अखां वेख के रजिया नहीं चेते रखियो अखां दी जोत चली गई है कन देख के रजे नहीं पर कन्ना विच सुनदी ताकत खत्म हो गई है जीव बोल बोल के स्वाद चक के रजी नहीं पर जीव विच बोलन ते स्वाद चखन दी ताकत खत्म हो गई है प्यारियो ए पैर चल चल के रजे नहीं पर असल विच इन्हां पैरां दी ताकत ही खत्म हो गई है केड़ी चीज है जेड़ी साडे अंदर नू तृप्त नहीं होण दिंदी पई गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विचों ही असी हजूर दा एक बचन पढ़ने इन्हां अखां तो बिना वेखण दी जांच आ जाए ते अखां रज जाणगियां इन्हां कन्नां तो बिना सुन दी जांच आ जाए ते कन्न रज जाणगे इस जीव तो बिना बोलन दी जांच आ जाए ते गुरमुखो एक दिन जीव तृप्त हो जाएगी ए गल वक्री के इंद्रियां बंदे दियां मर जांदियां ने पर वासना बंदे दी कदी नहीं जे मरदी इंद्रियां मरियां ने वासना ते नहीं मरी गुरु ग्रंथ साहिब च हजूर दा एक बचन आउंदा साहिब कहिंदे ने एक बंदे दा शरीर इतना कु निडाल हो गया ओ मंजे ते पिया ओदे कोल वेखण वास्ते अखां विच जोत नहीं सुन वास्ते कन्नां विच ताकत नहीं पर धन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने जदों ओ कदी बोलदा ते इंज लगदा जिवें सतवें पताल तो बोलदा अखां विच जोत नहीं पर चेते रखियो अखां दी पराए रूप नूं देखण दी वासना नहीं मरी अखां दी जोत मरी है कन्नां दी सुन दी ताकत मर गई पर निंदिया सुन दी वासना नहीं मरी जीभ दी ताकत खत्म हो गई पर स्वाद चखण दी वासना अजे दी मौत नहीं हुई हजूर ने एक बचन कह कहन लगे पुंडर केस कुसम ते तौले जेड़े केस ने दुध वर्गे चिते हो गए साहब कहिंदे ने कमल दे फुल दी तरह सफेद ने पुंडर केस कुसम ते तौले सप्त पताल की बाणी जदो बोलदा इंज लगदा जिवें सतवें पताल तो बोलदा अंदरों आवाज नहीं निकलदी लोचन शर्मै अखां विचों पानी वगदा अखां पूरी तरह खोल नहीं सकदा लोचन शर्मै बल बुद्ध नाथी बल भी चला गया अकल भी चली गई पर साहब कहिंदे ने खिमा करियो अंदर दी काम दी वासना नहीं गई बल चला गया ताकत चली गई लोचन शर्मै बल बुद्ध नाथी काम पवश मदानी अजे भी वासना एदे अंदर मदानी पा के बैठी है गुरु कृपा करे इन्हां अखां नूं आपां किवें रजा सकीए इन्हां कन्नां नूं किवें रजा सकीए इस जीव नूं किवें तृप्त कर सकीए ते इत्थे मैं बेनती करना हुन्ना अटैचमेंट ही डिटैचमेंट पैदा करेगी जुड़ना ही सानू किसे तो विछोड़ेगा असी चाहने नाम का रस आवे ते गुरमुख दुनिया का रस ता असी छड़न नू तैयार नहीं जीव ता दिन विच पता नहीं किन्नी वारी रस भोग दिए पर

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है ओ ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखा दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: सार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरहु गोबिंद
1: मन अंतर की उतरै चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर लेहु भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: सुनत कमाप्त हो उदहार
1: आप त्रैलो कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
0: रखे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल विकार रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभारी
1: नानक नवही खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सोत निधान
0: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ये फल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: तेहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समृत शास्त्र वेद बखाणी
0: सगल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

सुपन मनोरथ ब्रिथे सब काजै। नाम रंग सर्व सकोय बड़ भागी किसे प्राप्त होए। करन करावणे आपे आप सरासरा नानक हर जाप। करन करावण करने हार इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए। जो किसकीनो सो अपने रंग सबते दूर सब हुके संग। बुझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक। मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहे समाए। आप उपदेश समझे आप आपे रचे सबके साथ। आप कीनो अपन विस्तार सबका जो उसका हो करने हार। उसते भिन्न कहो किश होए थान थन तरे कैसोए। अपने चलते आप करने हार कहो तो करे रंग या पार। मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी। सच सच सच सब कीना कोड़ मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घड़ घड़ सुनी सरुण बखियानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरण जो जन परै सो जाने उदरण हार। संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। अष्टपदी संत के दुखना यार जा कटाए। संत के दुखना जानते नहीं छुटाए। संत के सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतर आए। संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सब कुछ हलै। संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे तो ए भीगत पाहे। संत का नंदक महातताई संत का नंदक खंडक न पाई। संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा। संत का नंदक राज तहीन संत का नंदक दुखी यार दीन। संत का नंदक सर्व रोग संत का नंदक सर्व जोग। संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावित उसका पी हो मोख। संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लाग है संत के दुखी को सब त्याग है। संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्म मरे संत के दुखना सुख ते टारे। संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भवे तले मिलाए। संत का दुखी यद बीत टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुंचे। संत का दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन भी जप ही खाए। संत के दुखी का वरन राखण हार नानक संत भवे तले उबार। संत का दुखी ओ बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव किंदा नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे केला जो बुआर तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीर्तन का तुर ही पया नानक जो तिस भावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सरा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत का दुखी की पूजे नासा संत का दुखी उठ चले निरासा। संत का दुख न त्रिष्ठा कोए जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटा कोए नानक जान सचा सोए। सब कर तिसको करने हार सला सला तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास ग्रास। सब कछ वरत तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम।

अष्टपदी मानुख की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिए रहे अगाए बहुर न तृष्णा लग गया ए, मारे रख है को आप मानुख का किशनाई हाथ तिसका हुक्म भू सुख होए तिसका नाम रखंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लग कोए उस्तत मन में है कर निरंकार करमन मेरे सद व्यवहार कमल रसना अमृत पियो सरा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सार संग बिन से सब संग चरण चलो हमार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगह नानक कुजल मथा बड भागी माहे सरासरा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सरासरा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने त्योत कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन माने आ नानक ते निरंजन जाने आ गुर प्रसाद अपने आप सूझै तिसकी जानो तृष्णा बूझै सार संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्योहार जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म के जिस मन भूख नानक तिसन लागे दुख जिसको हर प्रमाण चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रावे अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डराए जैसा साथ ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुर प्रसाद तर सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल न कि जन्म न किस मरे अपन चलता आप ही कराए आवन जावन दृष्टि दृष्टि आज्ञा कारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगतराय थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदृत नमंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे में लय कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तन पुरख का उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सरा सरा बसे हर संग सहे सुभाए होवे सो होए करने हर पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साता सा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओ सुख निधान उन्हों मन आए आप

अष्टपदी अविनाशी ही ब्राह्मण में राख मानुख की तो प्रीति त्याग तिस्ते पर ना ही किस कोय सर्वनंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शांद साध तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हवन राव मनसा पूर्ण सलना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अन ध्रुव मंगल सर जाक सर्व थोक सुनिए करता कह राज महाराज जोग मह जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तस्पुर का किन्यंत न पाया जाके लीला कीमत ना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिरकिनो विस्तार प्रभु अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरह पूर्ण सब ठाए नाना मिल करबण तबनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरसन सरवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत्य स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साध उपदेश सत जन जाकर दे प्रवेश सत नृत बुझे जे कोय नाम जब ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बुझ करत विचार करते के मित न जाने किया नानक जोत सुभावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिशाया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटनहार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग इकली बलागी

अष्टपदि चरण सत सत प्रसन्नहारे पूजा सत सत सेवदारे दर्शन सत सत पेखनहारे नाम सत सरजावनहारे आप सत सत सब धारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जा संता भोजन हार कौ सर सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मानिया करण करावण तिन मूल पछानिया जाकर दे विश्वास प्रभाया तत गया तिस मन प्रगटाया भय ते निरप हो बसाना जिस ते उपजत समाय समाना बस्त महेले बस्त गडाई ताको भेन कहना जाई बुझ बुझन हार विवेक नारायण मिल नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सला पुजारी ठाकुर का सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम किरंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की रख निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु धार नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जनका परदा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लाख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया कीरी मैं कर रख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप ताको रख देकर हाथ मानस जतन करत भात तिसके करत बिरथे जात मारे न राख है अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रव लख वडाणी बारंग बार बार प्रव जपिय पिय अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जन गुरमुख पाया तिसके शवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रास जो जंत्र बताने मनता नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम बोलो जस जे वदन रात प्रभु अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कचाए प्रभु अपने सुर समाए जो हुआ होवर सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभु से हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्शन पा मिटावे अवर सियानप सगले छाड़ तिस जन की तो सेवा ला।

अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुरबचनी हर नाम उचिरै सतगुर सिख बंधन कट है गुरका सिख बेकार ते हट है सतगुर सिख नाम धन दे गुरका सिख वडभागी हे सतगुर सिख हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख जी नाल समार है गुरका गृह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन में सह आपस कहो कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवे मन बेच सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्व गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जान जन्म पार ब्रह्म एक है अपने गच परम सह सियानप लया न जाइये नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर वचन करने आगाने मन संतोख आत्म पति याने पूरा गोरे आखे हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव तिसलै मिलाए जे बाएक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बवेक काहू बोला पहुंचत प्राणी अगाम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहा निरवै सुखदाई ताकि कीमत किन्ना पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरह है सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हरस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरख का नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम दुख तहते नासे तपत माए ठाड वरताई अनंद भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चुका निरपोह है बसे सगल बिहार मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा तारी सार संग जप नाम रारी थेत के भ्रम गवन सो नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाई अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दो जाना ही कोय सर्वनंतरे को सोए ओत पोत रविया रूप रंग भय प्रगा सार के संग

अष्टपदी जाचक जान जाचे प्रावधान कर कृपा देवो हर नाम सार जना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूरा सदा।

हार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारे आपे का विस्थारे जात सुभावे ता सृष्टि उपाय अपने भाने लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किस होए अपन सुर सब जगत परोए जाको प्राप जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी अजंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस्ता जबर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास ला बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे उबे आप परत पाल जीअन बहु भात जो जो रचियो सत सत आत जिस भावे तसलय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने करन हर नानक एक जानिया जान लागा हरे कहनाए जिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आई हुक्म बुझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निरवैर जय गुर के पैर एह लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले सार संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन कहे सुवाओ आठ पैर प्रभेखो नेरा मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा सोने उपदेश हिरदे बसाओ मन छे नानक फल पावो हलत पल दो लिहो सवार राम नाम मंत्र उधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन वसे ते साज परीखिया मन ता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वापार करो वापारी दरगह ने बैखे तुमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बोर न आवे जाहे तिस ते दूर कहा को जाए उबरे राखण हार त्याए निरभौ जप सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवर सुख चिंता जाहे मिटे अहंकार तिस जन पवचन हार सिरे उपर ठाडा गुरसूरा नानकता के कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रमाण अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै

अष्टपदी पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर के उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोट बेनती करो सार संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे आधार उत्तम सलोक सार के बचन मलीक लाल हे रतन सुनत कमावत हो दे उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरा तिनक साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु हम लाए मिट गए बैर।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भगण मैं जने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरद पयाउ प्रसाग सैन मुख अपयाउ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बस है सुत भरात मीत बनता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साध बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्याग वर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे नानक काट लिहो प्रभापे आदि अंत जो राखण हार तिसो प्रीत न करे गवार जाकि सेवा नवनिद पावे तासे मूड़ा मन हिलावे जो ठाकुर ससरा हजूरे ताको अंदा जान दूरे जाकि टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुक दे जान सदा सदा हो भूलन हार नानक राखण हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर प्राण छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोए गर्द प्रीत भसम संग होए अंध को मैं पत्र बिकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपस नह कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन साय समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लिहोड़ निभावे कहां बुझारत बुझै डोरा निस्कहिए तो समझे पोरा कहां बिसन पर गावे गोंग जतन करे तो पीसर भंग कह पिंग।

अचरज कथा अष्टपदी सार के संग मुखुजल होत सार संबल सगली खोत सार के संग मिटे अभिमान सार के संग प्रगटे सो ज्ञान सार के संग बुझे प्रभ नेरा सार संग सब होत नवेरा सार के संग पाए नाम रतन सार के संग एक उपर जतन सार की महिमा बरने कौन प्राणी नानक सार की शोभा प्रमा है समानी सार के संग अगोचर मिला सार के संग सरा पर फुलाय संग आवे बस पंचा सार संग अमृत रस पुंचा सार संग हो सब की रेन सार के संग मनोहर बैन सार के संग न कतहु तावे सार संग अस्तित मन पावे सार के संग माया ते भिन्न सार संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सार संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत सार संग किस्यो नहीं बैर सार के संग न बींगा पैर सार के संग नाही को मंदा सार संग जाने परमानंदा सार के संग नाही हो ताप सार के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने सार के संग न कबू तावे सार के संग सदा सुख पावे सार संग बस ते अगोचर लहे साधु के संग जरसा है सार के संग बस है थान ऊंचा साधु के संग महल पहुंचा है सार के संग दृढ़ सब धर्म सार के संग केवल पार ब्रह्म सार के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान सार के संग सब को लोधार है सार संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु के संग सो तन पावे जिस तन ते सब को वरसावे सार संग धर्म राय करे सेवा सार के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन सार संग अमृत गुण गायन सार के संग सर्व थान गम नानक सार के संग सफल जनम सार के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल सार के संग कलूखत हरय सार के संग नरक पर हरय सार के संग इहां उहां सोहेला सार संग बिछरतर मेला जो इच्छा सोई फल पावे सार के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधृत बसाय नानक उदरै सार सुन रसाय सार के संग सुनो हर नाओ सार संग हर के गुण गाओ सार के संग नमन ते बिसरै सार संग सर पर निस्तरै सार के संग लगे ब्रह्म मीठा साधु के संग घट का डीठा साध संग पहे आज्ञाकारी सार संगत पहे हमारी सार के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग सार की महिमा भेद न जान है जेता सुने तेता बख्याना है सार की उपमा ते गुण ते दूर सार की उपमा रही भरपूर सार की शोभा का नाही अंत सार की शोभा सराबी अंत सार की शोभा ऊंच ते ऊंची सार की शोभा मूच ते मूची सार की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख सर्व को सुख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक जो बसदा को खोद को चन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कहे गुनाओ नानक जो पाव कसाय सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगास जैसे तारी उपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा माने अपने हिसाब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रव्याप करे। सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब उपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सरा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ज्ञानी के नाम प्रभार। ब्रह्म ज्ञानी सरासर जागत ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी के होया चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सरा नमस्कार। सब सृष्टि का कर्ता सर जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा

अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहजोन प्रमावे भूंगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी है मुक्ति आगे सुख पावे धनवंता हो कर गरबावे तृण समान का संग न जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खनमय हुए जय पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जा नानक दरगाह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व किरेन जाका मन होए कहो नानक ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कस होए तब इस कोस को ना ही कोए जब ही जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूट है गुर प्रसाद नानक हो छूट है सहस कटे लख को उठता तनावे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया के कर तृप्तावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन करावण आपे आप सरा सरा नानक हर जाप करन करावण करण हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्टि करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किसकीनो सो अपने रंग सब का संग बूझा देखा करे विवेक आपे कापे अनेक मरे न बिन सहे आव न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश है समझे आप या फिर रचे सबके साथ आप किनो अपने विस्तार सब कछ उसका हो करने हार उसते भिन्न कहो किश होए थान थन तरे अपने चलत आप करने हार कौत करे रंग या पार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण वखिया।

कै संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखण यार जा घट है संत के दुखण जमते नहीं छुटा है संत के दुखण सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखण मत हो मलीन संत के दुखण सुबत हीन संत के हथे को रखण कोय संत के दुखण थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भीतर आए संत के दुखण ते मुख पवै संतन के दुखण काग ज्यों लवै संतन के दुखण सर्प जोन पाए संत के दुखण त्रिगत जोन करमाए संतन के दुखण तृष्णा में जलै संत के दुखण सब को छलै संत के दुखण ते सब जाए संत के दुखण नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नानक संत पवे तो ए भीगत पाहे संत का नंदक महातताई संत का नंदक खिंटक न पाई संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राजते हीन संत का नंदक दुखियार दीन संत का नंदक सर्ब रोग संत का नंदक सर्ब जोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावे तो उसका पी हो मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते टराए संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पवे तलै मिलाए संत का दुखी यद बीते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर दे थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन भी जाप ही खाहे संत के दुखी कवन राखण हार नानक संत पवे तले उबार संत का दुखी इं बिल लाए ज्यो जल भी होन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राज जो पावक कींदा नहीं त्रापै संत का दुखी छुटाए केला ज्यों बुआड़ तिलखेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत कीर्तनंद का तुर ही पया नानक जो सुभावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत का दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न त्रिष्ठा कोई जैसा भावे तैसा कोई होए पया किरत न मेट कोई नानक जान सच्चा सोए सब कर तिसकी ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याव सास ग्रास सब कछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनों कृपा करे तिसे अपन नाम दे।

कह सत पुरख जिन जानेया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवको गुरसला दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन कट है गुर का सिख विकार ते हट है को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है गुर का गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन मैसा है आपस को करकश नज नावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचा है सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हो कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आव करे नानक सो सेवा गुर की मत ले बेस बिस्व गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जान जान एक है आप नहीं कछ परम सह सियानप लै आना जाइये नानक ऐसा गुरबड भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसद चरणगत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर बचन करने अगाने मन संतोख आत्म पति जाने पूरा गुर आखे हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावित सलय मिलाए जे बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहु बोल पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराह निर्वय सुखदाई ताकि कीमत कर न पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलहारी सतगुर अपने नानक सा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवको दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तप्त माए ठाठ वरताई अनंद भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चुका निरपहु होए बसे सगल बिहार मन ते खाय नसे जिसका साथ न कृपा धारी सर संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सो नानक हर हर जस सरवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ्या बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सरवण अंतर एको सोए ओत पोत रवि रूप रंग भय प्रगास हर के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बानक बलहारी सलोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार। अष्टपदी सजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत विसार हो चरण कमल रिद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़का गहो नाम हर वथ एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जा जिस तन को चार कुंड उठतावे सो तन हर सेवा ते पाव है जिसो को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिसो बा को करे भली करनी सासो बा पज हर की सरनी अनके उपावे रोग न जाए रोग मिटे हरे औखद लाए सर्व निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध हो अर कह नाए दह दिस धावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोय जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सला सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होय आस भगत पाया तम प्रगास तित घर जाए बसे अविनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव याव त्याग शरण गुरदेव इयो रतन जन्म कहो उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनके उपावना छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मनशित नानक फल पाए सांगना चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोतमीत कुटांबेर बनता इनते कहो तुम कवण सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवण छुटकार आस हस्ती राथ असवारी झूठा डंभ झूठ पासारी दिन दिए तिस बुझे ना बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बडूबे स्याने
ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਓ ਤ੍ਰਿਉ ਤਸਮੈਲ, ਬਿਣਸ ਜਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਹੇ ਅਚੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਧਨਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ, ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ, ਏਕੋ ਜਾਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਾਂ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਕਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਗਏ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ। ਫਿਰ

अष्टपदी जाचक जान जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम सार जना के मांग तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाव हो सास सास प्रभत में त्याव हो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोटे को आधार नानक मंगे नाम प्रभ सारे प्रभ की दृष्टि महासुख होय हर रस पाए बिरला कोय जिन चाख्या से जंत्र पिता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजे चार संग परे सरनियान सब त्याग अंतर प्रगास अंदर लिवलाग बड़ भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रत सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नुसरा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया ऐश पुन्य सरदा सपूरी रव रहा सर संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरा जे काल न पान सो क्यों बिसरा जे किया जान सो क्यों बिसरा जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया सो क्यों बिसरा जे अगण में राख है गुर प्रसाद को बिरला लख है सो क्यों बिसरा जे बिखते काड है जन्म जन्म का टूटा गंड है गुर ते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याए आ साजन संत करो यो काम यार त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो हर नाम जपाव हो भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सिशार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख कहवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन ते अंतर ही सुभाव नेत्रोपेख दर सुख होए मन बिक से सार चरण धोए भगत जना के मनता रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक्षंद दीन दयाल भगत वशला कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक मरि शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम कर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम कथा मन पाई बह भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सार गुण निर्गुण निरंकार

अष्टपदी जब अकार हो कशन दृष्टेता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद तब बैर बिरोध के साथ, जब इसका वर्ण चेहना जापत तब हरक्षो को किसे व्यापत, जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कह किसोवत परम, आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी, जब एक हरागा में अपार तब नरक सुर का कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव शक्त कह कतठाए, जब आप है आप अपनी ज्योत रह तब कवन डार कवन कत डराए, आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत गोचर प्रभु का तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपने आप ही चर्जा नानक अपन रूप आप ही परजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तो, जह निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कौ कीस, जह जो स्वरूपी जोर संग समावे तह किसे भूकम त्रिवतावे, करण करावण करने हार नानक करते कना है समार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कला पे प्रवीण तह वेद के देव कहा कौचीन, जब अपन आप उतार है तब सगन अप सगन कहा विचार, जह अपनी ऊचे अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर गुण कहिए चेरा, बिस्मन बिस्मर है बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप, जह अशल अशेदा भेर समाया ऊहा किसे व्याप्त माया, आपस कहो आप आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश, जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जह अपने आप आपति आरा तह कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुचा, जह आप रचो प्रपंच आकार त्यो गुण में किन्नो विस्तार, पाप पुन तह पही कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखयान, आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक कह, जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप, दो पा कापे तनी उनकी शोभा नो बनी, आपे कौत करे अनद चोज आपे रस भोग निरजोग, जिस भावे तिसे अपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनोपदेश पार्ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर के आस अनित त्यागो त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सार संग अगन सागर तरहो हर धन के पार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित व नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ही आधार उत्तम श्लोक सार के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होते उधार आप त्रैलोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगट है गोपाल महाद के माथे नानक उदरतन के साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आ मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सार संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सनसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक ने बेखेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सो तन दान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मर सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होए तू करता करना मैं नाहे जाहो करे ना होए। बलिहारी कुदरत वसिया चिरांत ना जाय लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मह जाता अकल कला पर पूर रहा तू सच्चा साहेब सिफत सवाले जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना।

सदैव सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरुद्वारिआं गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िआ गिआ है,

तुम्हारी शरण तुम्हारी आस, तुम ही सजन सुहेले, रखो रखन हार दयाल, नानक करके गोले, जब लो नहीं पाग लिलारी उदय, तब लो परमते फिरते बहुत आयो, कल कोर समुन्दर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पुछतायो, तत विचार जह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन घर बनायो, ज्ञान ध्यान किशकर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत का अंचल लाभ, लिखम नदी जय तरनी, हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई,

दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख दाई होवे सिफत खसामली नूर अरसहु कुरसहु चटिया उद डिठे सच्चे पातशाह।

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: गुरु प्यारे, गुरु सवारी, सात संगत जी, आप जी ने बड़े प्रेम नाल सतगुरां दी हजूरी दा आनंद माणदे आ आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते सेवा निभारे सन भाई नवदीप सिंह जी उपरंत अरदास अते मुख वाक दी सेवा सिंह साहिब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी हजूरी अरदासी श्री दरबार साहिब उन्हां पासों बड़े प्रेम नाल सरवण कीते गुरमुख जना दा समूह संगत

काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं कह दिया करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आख दया, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखद्या करोड़ा पाप मिट जाते, करोड़ा दुख मिट जाते। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौख है, सौख है, बहुत सौख है। एक दफा वाहेगुरु आखना बहुत औख है, बहुत औख है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने औख है, पर करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना है, मता किधरे एक दफा वाहेगुरु कहण की जाच आ जाए, बस इन्नी गल। खेड एक दफा नाल बनेगी, दो दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम दी इतनी महिमा, एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। कीड़ा एक दफा जबान उच्चारण करे वाहेगुरु, उठी ते धुन ना बीत हो, धुन वापस ना बीत जावे। हुण सुन के जाएंगे, मिनट थोड़े रह गए, इसी च मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा, यह धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी। जिस रस्ते तो आई है जाएगी, उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची, ऐसे मनुख नो वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस आवेगा। इदी धुन मधमा तक पहुंच गई है। ऐसे मनुख नो कहने ने वाहेगुरु एदी रसना ते वस गया। जैसे भोजन दी बुरकी मूंच पाई, स्वाद ते आ गया, पर ए भोजन अजे खून नहीं बनया, अजे नसा दे गर्दिश नहीं पिया करता, अजे कंठ तो थले ही नहीं गया, अजे मास नहीं बनया, अजे चर्बी नहीं बनया, अजे खून नहीं बनया, स्वाद ते आ गया। जिन्हों वाहेगुरु आखण का स्वाद ही नहीं आ रहा, यकीन जानो अजे मदमा की खेड भी नहीं बनी, अजे इंज कह लो बुरकी मूंच भी कोई नहीं, गुस्ताखी माफ। वाहेगुरु आखण का स्वाद आ गया, इसनों कहने ने प्रभ जी बसे साध की रसना। नानक जन का दासन दसना, जबान ते बस गया पहचान। ये वाहेगुरु कहिंदा है रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है, ये बेरसे बाणी नहीं जपदा। कारण शब्द गहरा चला जांदा है कंठ तक, इतना सुनदा अजे इतनी गहराई है। सहजे सहजे ये होर गहरा चला जाए पसंती, स्रोत इतनी गहरी हो जाए। जितनी स्रोत गहरी होवेगी उतना आनंद वधेगा, उतना अनुभव वधेगा, उतना ज्ञान वधेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, ऐसा मनुख अनाहद दी धुनी सुनन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी च पंज सत मनुख ते ऐसे देखे ने जो अनाहद सुनदे सन। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनू मिलिया, अज ते बैठा नहीं है, मैनू इस तरह कहण लग पिया। कुछ चेहरा उसका लगता सी, मैनू कुछ बोलों की सच्चाई भी लगती सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, आहत जो दो चीजा के टकराव तो पैदा होंदा है, अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वह आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया, मां की रकत पिता बिंदारा। शब्द तो ब्रह्मंड आया तो ब्रह्मंड विच शब्द मौजूद है। उस शब्द नूं अनाहद नाद कहिंदे ने, परमात्मा की आवाज कहिंदे ने। इह धुन वापस पसंती हिरदे तक पहुंच जाए, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा। हुण थोड़ा जिहा पड़ाव रह गया, इत्थे मनुख बड़े तरले रहिंदा है। प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, हुण तैनू देखण दा चाह है। ऐसे मनुख नूं कह देंदे ने इह दर तक पहुंच गया, क्योंकि अनाहद तो उत्पत्ति सी ना, ये दर तक पहुंच गए। इसे तो कबीर कहने, दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल के वाड़ केड़े दरवाजे। कोई बाहर दे दरवाजे नहीं, ये पसंती तक पहुंच गए। उस अवस्था का जिक्र करता है, ये अनाहद नाद सुनन

0: सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों में प्रगट होता है, तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य? यही मनुख है, रोग विच जीवे, सोग विच जीवे। चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारां फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयंग तरंगं अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहने जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा हो, ज्वालामुखी अग विच जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच डुब रहा हो। इंज कह रहो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहिंदे ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे स्वास्थ्य कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जब कोई चढ़दा है एक अवघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनती है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनती है। राम रस ते काम रस इंज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नु जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जांदी है तो भगवान नु जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नु भी जन्म देंदा है, भगवान नु भी जन्म दे सकदा है। संतान नु जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नु जन्म देण दे च करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जांदे ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा जद कोई भगवान नु जन्म देंदा है। और भगवान नु जन्म देना की होंदा है, वो स्वयं भगवान मई हो जांदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पछाने। उन इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए? रोग दिच जीवी है, सोग दिच जीवी है, इस तो छुटकारा हो सकता है। बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान विच यही अंतर है। ਫਰਾਇਡ ਜੈਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੇ ਤੜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਪਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਈ ਸਵਾਸਥ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਗਰ ਸਵਾਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਖਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उथे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा हुंदा है, जीवन दे होंदे होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे होया मौत तो किवें बचीए, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए, इना रोगां तो और में छुटकारा आवे। प्रथम चिंता तो किवें बचीए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीम, जिन भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है, इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक फिर नहीं होए। पर जिन्हां अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है ये अर्थ नहीं है, अज तक जिन्हां अर्थां विच इस नूं पढ़िया जा रहा है ये अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है, बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है, काटा पै गया दिवालिया हो गया कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उस दी कर जो अनहोनी आउंदी है, श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने ए अर्थ नहीं ने। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है, चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, ये मनुख दी चाहत है, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिदा है, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण है, ऐसा नहीं होना चाहिदा मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिदा है मैं चाहना। पहले इस गल दी चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सुट, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे दी तरह हो जावा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ये आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना होवा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। एक बुढ़ा ये आखे मैं कदी नहीं मरा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है, पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है और धन गुरु नानक देव जी महाराज नो विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है या वेला बैठा है, बैठा है बहुत काल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य की चिंता विच। ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूत काल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिदा है, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा, ते मन नूं भज्जण दौड़न वास्ते समा चाहिदा है। मन दी भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय विच दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा, अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनता है, आनंद उदों बनता है जिथे मन किसी संगीत की धुन विच, किसी नृत्यकार की कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर ध्वनि विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जाता है, आनंद ते बन जाता है, पर सदीवी टिकाऊ नहीं आता। क्यों? मन भटकदा है समय विच, कि समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल, पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा, भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है, पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां, सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे हां, ना बोध हेच निशान हाजे जमीनो आसमां, कि शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा? ऐसा एक सूफी संत ने भी आखे, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम, ऐ खुदा को मैं अज दा आशक, अज दी तेरी तलाश कर रहा, अचेतपणे सुचेतपणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम, ए आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी, मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नू भटकण लई समा चाहिदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहिंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां ही जो है चिंतावां तो एक पासे हो, मन नू लिया किथे लिया? वर्तमान दिच, वर्तमान दिच। भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान दिच मिलेगी, और ओही भगवान दी झलक वर्तमान नु भी बिटा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल ही पैदा होता है भविष्य नु और भूतकाल नु किवें मिटाई है, जिते हर थां ते पीछा करता है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्खां च बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है, क्योंकि मन नूं दौड़न ते भज्जण लई समा चाहिदा है, भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। तो पहले समझिए वर्तमान किन्ना क है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हम आदमी आं इकदमे, मौलत मौत न जाना, वर्तमान इकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एक दम है जो मेरे मुंह च है, सारिया दे मुंह च है, जिड़ा दम अजे आया नहीं है वो ते मेरा भविष्य है, ते जिड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो वो ते भूतकाल है, जो दम चला गया इनू मैं खर्च नहीं कर सकता, जो दम अजे आया नहीं मैं उसनू वर्त नहीं सकता। एक दम तो इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, एक दम दे च की कर सकदे आ? एक दम दे च कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एक दम दे च कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एक दम दे च कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एक दम दे च कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। पर गुरु नानक कहिंदे ने एक दम दे च परमात्मा प्राप्त किया जा सकता, जद भी मिलेगा एक दम दे च, क्योंकि एक दम नकद है ते धर्म दा सौदा परमात्मा दा सौदा नकदी नाल आउंदा है, नकदी नाल आउंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एक दम दे च पूरे हो जाते ने, राम एक दम दे च पूरा हो गया, ओम एक दम दे च पूरा हो गया, अल्लाह एक दम दे च पूरा हो गया, वाहेगुरु एक दम दे च पूरा हो गया, करोड़ दफा वाहेगुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा, करोड़ दफा वाहेगुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा पाप मिट जाणगे, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा दुख मिट जाणगे। ये तो फिर पहेली हो गई, नहीं पहेली नहीं, सारे महामंत्र एक दम दे च पूरे हो जाते ने, वाहेगुरु इको ही दम की लोड़ है। हुण मेरा सारा ध्यान इसी मंत्र दे सुनन दे च आ जाए, वाहेगुरु, और जैसे मैं एक दम दे च आवांगा सारे दे सारे ध्यान नू ल्यावांगा, इसे नू ध्यान साधना कहंदे ने, तो भूत काल खो जाएगा, भविष्य खो जाएगा, वर्तमान ने भगवान नू प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने, बेत कतेद इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ, खुदा हाजर नाजर है, परमात्मा हाजर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसे तरीके नाल वर्तमान दिच आईए, बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान दिच नहीं जीवदे, भविष्य दियां चिंतावां दिच जीवदे ने, बड़े बड़े सियाने मनुख वर्तमान दिच नहीं आउंदे, भूतकाल दियां यादां च बैठे होंदे। और एक दफा मनुख वर्तमान दिच आ जाए कि वर्तमान सिर्फ एक दम है, उस दिच आमदेया मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जांदा है, तन रोग है मन सोग है, रोग सोग तो उच्चा उठ जांदा है, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने, उस हरी जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जांदा है। नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत न जन्म जना, एक वर्तमान दिच आमदेया अगला जन्म नहीं होवेगा, मरण नहीं होवेगा, और ये जड़ा जीवन कोल है इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा। यही एक साधना है और यही औषधि है, यही औषधि इशां दे भ्रमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंड दे रहे। बाबा फरीद भी कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद, ताकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया, अज मिलावा ले तो अज तो मुराद की अज दा सारा दिन कता ही नहीं, अज तो मुराद वर्तमान, वर्तमान तो मुराद एकदम एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहंदे ने, यकदम बखेश राना बुरदम के खीसतम, ए वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त, मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी, ते नकद जिंदगी की सी जिड़ा मेरे मुंह दे च दम सी, नकद सी, जिड़ा दम आया नहीं उधारी सी, जिड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो ते खर्च हो गया, मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ इक्को ही दम है, इक्को ही दम है, नकदी मेरे कोल इक्को ही दम है, इक्को ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है, नहीं, एक दम दे परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे सारा जहान मिल सकता है, एक दम दिच सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम दिच परम रस मिल सकता है। पर मनुख इस एक दम नु किवें बतीत करदा है, इसे एक दम नु बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद दिच, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਔਰ ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾਂ ਗੁਯਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ, ਬਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 50 ਹੈ 40 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 40 ਹੈ 30 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸਤਰੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਸੀਖੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀ ਜਾਨ। ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ। ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: A sunde ho ji?
3: Haan ji.
2: Dasso ji ki pakaiye?
3: Apne gawand wale futti ke na jaiye.

0: अपने
1: कट प्राइस दीजिए, सब्जी फल खाना है,
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
5: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण @604581-1900।

हों मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: नमस्ते जी, सब्जी भले खाना है,
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ
1: ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ
2: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: ट्राई कीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Bod of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Bod, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBodGroup.com.